को भोग लगाऊं मैं, खुद को नमन करूं, खुद ही खुद में मस्त रहूं मैं, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करूं। रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। और आप सुन रहे हैं सुकून म्यूजिकल स्टूडियो प्रस्तुत संगीत का असर, सुकून का सफर। शुक्र है, शुक्रवार है, और मैं आप सभी का प्यारा, आप सभी का दुलारा, सतयुग से लेकर कलयुग तक जिसे आप सुनना चाहते हो उसी की आवाज, और मैं हूं आप सभी का प्यारा गोपाल। आइए सुनते हैं आज की सबसे पहली पेशकश। गणपति का पावन पर्व चल रहा है, और इस पर्व पर मैं आप सभी के लिए गणपति बप्पा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सदैव सुख शांति, सुख समृद्धि, यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, आरोग्य संपदा, पारिवारिक जीवन का सुख आपको मिलता रहे, और आपके बच्चों के प्रति और आपके पोता पोती के प्रति जो भी सपने हैं वो ईश्वर ब्रह्मांड पूर्ण करे। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, गणपति बप्पा से प्रार्थना करता हूँ। आइए हम लोग आज सुनते हैं, पर कुछ सुनाने से पहले रेडियो विश्वास को मैं अपने नजरिए से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। चंद लाइन रेडियो विश्वास के लिए। जिंदगी को जीता हूँ मैं, आसमानों को छूता हूँ मैं, दुनिया की भीड़ से अलग अपनी राह बनाता हूँ मैं, आने वाला पल है मेरे साथ, आने वाला पल है मेरे हाथ, अब किसे है डर चुनौती का, गले लगता हूं उसके जैसे वो कोई खूबसूरत हसीना हो। हाँ दोस्तों, रेडियो विश्वास ने अब तक का जो सफर तय किया है वो सारी चुनौतियों को अपने गले लगाते हुए यहां तक बढ़ा है, और इसीलिए रेडियो विश्वास को आप सुनना चाहते हो, आप रेडियो विश्वास से प्यार करना चाहते हो, तो मैं ऐसे सभी श्रोताओं का रेडियो विश्वास की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और आगे भी आप हमें सुनते रहे ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आइए सुनते हैं आज के पहले पायदान पर पृथ्वेश मित्रा जी का सॉन्ग।

आइए दोस्तों अगले पायदान की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। सुकुन म्यूजिकल स्टूडियो प्रेजेंट, संगीत का असर सुकुन का सफर। शुक्र है शुक्रवार है और सतयुग से लेकर कलयुग तक आपके दिलों पर राज करने वाला मैं गोपाल। आइए अगले सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। अगला सॉन्ग लेकर आ रहे हैं प्रवीण जी पाटिल और गीत के बोल है मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये गीत गाया हुआ है और सुहानी रात ढल चुकी। सुरेश जी और मधुबाला जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये सॉन्ग, नौशाद जी ने संगीत दिया हुआ है और 1949 में ये फिल्म आई थी और आज अगर हम लोग देखें तो 2026 में इस फिल्म को आकर और मोहम्मद रफी जी ने इस सॉन्ग को गाकर 77 साल पूर्ण हो चुके हैं, 77 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज भी ये सॉन्ग सभी के दिलों की धड़कन बना हुआ सॉन्ग है जिसे लेकर आ रहे हैं प्रवीण जी पाटिल।

0: थैंक यू।
1: प्रवीण जी पाटिल की आवाज में आपने ये सॉन्ग सुना। दोस्तों ऐसा ही एक सॉन्ग बच्चन साहब के ऊपर फिल्म आ गया था और शराबी फिल्म से ये सॉन्ग था, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ऐसे कई सारे सॉन्ग हैं जो इंतजार के ऊपर बने हुए हैं या किसी को बुलाने के लिए बने हुए हैं। ऐसा ही ये सॉन्ग अभी आपने सुना है, मोहम्मद रफी जी ने गाया हुआ और प्रवीण जी पाटिल की आवाज में। दोस्तों रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर ऐसे ही सॉन्ग आपको सुनने के लिए मिलते रहेंगे। आपका जो प्यार हमें मिल रहा है उस प्यार के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका प्यार रेडियो विश्वास 90.8 के प्रति ऐसा ही बना रहे। सुकून म्यूजिकल स्टूडियो प्रस्तुत संगीत का असर, सुकून का सफर, शुक्र है शुक्रवार है। आइए दोस्तों अगले सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। पर आप सभी को बता दूं कि गणपति बप्पा का ये पावन पर्व चल रहा है और गणपति बप्पा हम सबके घर में विराजमान हो चुके हैं। तो मैं आप सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तानी वासियों के लिए दुआ करना चाहता हूं कि अमन और शांति पूरे हिंदुस्तान में बनी रहे और आप सभी का जीवन हंसते हुए, खेलते हुए, सुकून के साथ गाते हुए और सुकून के साथ मुस्कुराते हुए व्यतीत होता रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आइए दोस्तों अगले पायदान पर हम लोग सुनते हैं वक्त फिल्म का सॉन्ग, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। बिल्कुल सही कहा है इस सॉन्ग में, हमें अपने जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जिंदगी कब कहां किस मोड़ पर और कैसे ले जाएगी ये तो सिर्फ वक्त डिसाइड करता है। और ये सॉन्ग गाने जा रही है गुरमीत दरिया नानी। इनके बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुकून म्यूजिकल स्टूडियो के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया से ऑडिशन के माध्यम से लगभग 50 सिंगरों का सिलेक्शन हुआ था और ये सारे सिंगर दुबई परफॉर्म करने वाले थे, मिलेनियम एयरपोर्ट होटल दुबई। 15 सितंबर को वहां पर प्रोग्राम हुआ था और मिलेनियम एयरपोर्ट दुबई होटल में गुरमीत दरिया नानी ने यही सॉन्ग को रिप्रेजेंट किया था। आइए उसे सॉन्ग को आज फिर हम सुनते हैं, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, गुरमीत दरिया नानी की जुबानी।

सतयुग से लेकर कलयुग तक आप सभी के दिलों की धड़कन, मैं हूं गोपाल और आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। इन सब के परफॉर्मेंस सुनने के बाद मुझे भी लग रहा है कि मैं भी आप सभी को अपनी आवाज के जादू से आपके दिलों पर राज करूं। तो आइए अगला सॉन्ग सुनते हैं मेरी जुबानी, और सॉन्ग के बोल है लाखों है निगाहों में जिंदगी की राहों में, मोहम्मद रफी जी ने गाया हुआ।

अभी आपने सुना लाखों है निगाहों में जिंदगी की राहों में। आइए हम लोग अगला सॉन्ग सुनते हैं और अगले सॉन्ग के बोल है।

अभी आपने बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुना है। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, प्यार जहां पर है वहां पर हार जीत नहीं होती है, और प्यार जहां पर है वहां पर शर्तें नहीं होती है। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। ऐसे ही आप सुकून के साथ बने रहिए, और संगीत का असर, सुकून का सफर सुनते रहिए विश्वास रेडियो पर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सॉन्ग आपको पसंद आया होगा।

चाहे को दरवाजा तू करने लगी बंद, तू करने लगी बंद। नकूंगा खिड़की के शीशे तोड़ फोड़ के, तोड़ फोड़ के, तोड़ फोड़ के रख दूंगा खिड़की।

आइए, अरे आइए ना, तशरीफ लाइए। कमाल है, पहली बार आए हैं हमारे घर आप। अजी पहली बार आपसे हुआ है मिलाप। कहिए कहिए ना, कहिए कहिए कहिए ना।

फुर्सत मिली बहुत दिनों के बाद, पर बड़ी उम्र है आपकी, अभी किया था याद।

0: वक्त को क्यों खोता है ये गुलाबी मौसम है, वक्त को क्यों खोता है।
1: जिस्म हो जब बाहों में दर्द उड़न छू होता है।
0: प्यास मचल कर बोली इश्क को मारो गोली,
1: प्यास मचल कर बोली इश्क को मारो गोली।

संगीत सपेरा साफ सुने सरसाए, साफ सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा संग समाए।

0: कान को बंद कर दिया।
1: दिल धड़क रहा है, जरा ठहर जाइए।
0: लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता।
1: मुझे भी जाने की जल्दी है अमर बाबू।

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।
1: जस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो मुझे।

0: कर सकते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। माई इस लॉटरी का नंबर मिला दे और जल्दी से बादल की नैया को पार लगा दे। अरे पांडु अभी तक मोतिया लॉटरी का रिजल्ट लेकर नहीं आई रे।
1: आती होगी गणपत भैया, तब तक माता जी का आशीर्वाद देने ले।
0: हाँ ले लो ले लो। जय जय जय जय जय जय जय हो।